मैं तेरा पारदानी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ इक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

कि जंग दी सब तो वड्डी कीमत मासूम बच्चियां नूं जड़ा ना चुकाउणी पवे। आखरी खबर इंडिया दी है, जिहदे विच इंडिया जो कुछ जंगां लगियां ने उहदे तों सुचेत होके हुण अपने जिहड़ा तजर्बे लगा शुरू करना। ईरान संकट तों सबक लै रिहा भारत ते हुण बना रिहा सब तों वड्डा अंडरग्राउंड पैट्रोल LPG जिहड़ा दा महा रिजर्व बैंक। पछमी एशिया संघर्ष तों बाद ग्लोबल तेल सप्लाई दे विच आई रुकावट दे प्रति भारत की संवेदनशीलता उजागर होने तों बाद केंद्र सरकार ने भारत की जड़ी है ऊर्जा सुरक्षा नूं मजबूत करने लई 5 नवे राजनीतिक पैट्रोलियम भंडार बनाउण दी योजना बना ली है। इन्हां प्रोजैक्टां दे पूरे होण दे उत्ते भारत की रणनीतिक तेल भंडार समर्था जड़ी मौजूदा 9.5 दिनां तों वध के लगभग 40 दिनां दे कच्चे तेल की दरामद के बराबर जड़ा हो जाएगी। यह अजे भी अंतरराष्ट्रीय मापदंडां दे नालों काफी घट रहेगी। जिथे देखा जाए तो बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते होर देश जड़े ने इनु जड़ा अपने इकट्ठा करदे आ सारा मटीरियल। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी दे दिते गए सुझाव दे मुताबक सप्लाई दे विच रुकावट दे दौरान ऊर्जा सुरक्षा यकीनी बनाउण दे लई देशां नूं घट्टो घट 90 दिनां दे शुद्ध तेल आयात दे बराबर जड़ा एमरजेंसी तेल भंडारण जड़ा बना के रखना चाहीदा है। भारत नूं अजे भी इस दिशा दे विच काफी लंबा जड़ा सफर तय करना है क्योंकि रणनीतिक तेल भंडार बनाउण दे विच कई होर एशियाई अर्थव्यवस्था तों जड़ा पिछे ने। बिजनेस स्टैंडर्ड दी इक रिपोर्ट दे अनुसार ओडिशा दे चांदीखोल, मध्य प्रदेश दे बीना, राजस्थान दे बीकानेर दे विच ते कर्नाटक दे मंगलुरु दे पादूर दे विच 5 नवे SPR प्रोजैक्टां दी योजना बनाई जा रही है। प्रस्तावित रोडमैप दे तहत केंद्र सरकार दा टीचा वित्तीय साल 2027 दे अंत तक चांदीखोल रणनीतिक पैट्रोलियम भंडार दे निर्माण दा ठेका देना है। रिपोर्ट दे विच इह वी कहा गया कि लोड़ीदियां मंजूरियां मिलण तों बाद बीना अते बीकानेर दे विच वी प्रस्तावित स्टोरेज जड़ा सहूलतां दे लई विस्तृत संभावना अध्ययन शुरू कर दित्ता जावेगा। योजना है चांदीखोल भंडार तों लगभग 40 लाख टन स्टोरेज समर्था मिलण दी उम्मीद है। बीना ते बीकानेर दे विच प्रस्तावित सहूलतां नूं क्रमवार लगभग 50 लाख टन अते 5625 मीट्रिक टन कच्चे तेल दी स्टोरेज दे लई डिजाइन कीता जा रहा है। इक वार पूरा होण दे उत्ते बीकानेर प्रोजैक्ट लूण गुफा स्टोरेज तकनीक दी वरतों करके बनाया जाण वाला भारत दा पहला रणनीतिक जड़ा पैट्रोलियम भंडार बन जावेगा। भारत दी मौजूदा तेल भंडार समर्था जो दसी जांदी है भारत वर्तमान विच कर्नाटक दे मंगलुरु अते पंडूर अते आंध्रा प्रदेश दे विशाखापट्टनम दे विच स्थित 3 रणनीतिक तेल स्टोरेज सहूलतां दा संचालन करदा है। पथरीलियां गुफावां ते आधारित इह सहूलतां इंडियन स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जिहड़ी है उहदी मलकीयत अते संचालन हेठ ने जो जंगां भू राजनीतिक उथल पुथल सप्लाई दे वड्डे संकट दे दौरान एमरजेंसी कच्चे तेल दे भंडारण नूं बनाई रखण दे लई सरकार दे द्वारा जिहड़ा स्थापित कीती गई इक विशेष उदेश कंपनी है। इस दे दौरान सरकार ने सरकारी मलकीयत वाली तेल अते कुदरती गैस निगम नूं मंगलुरु दे विच 1.75 मिलियन टन दे नवे भूमिगत रणनीतिक जिहड़ा पैट्रोलियम भंडारण नूं अपना विकसित करन दा निर्देश दिता है। यह प्रोजैक्ट भारत दे विच किसे सरकारी तेल कंपनी दे द्वारा विकसित कीता जाण वाला पहला रणनीतिक पैट्रोलियम भंडार होएगा। इस वक्त बाकी दो मुल्कां दी गल करिए ते चीन दे कोल सब तों वध रणनीतिक तेल भंडार ने। रणनीतिक तेल स्टोरेज समर्था दे मामले च भारत कई प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थावां तों पिछे है। तुलना दे लई चीन ने रणनीतिक अते व्यापारक तेल दा सांझा भंडार लगभग 1.3 अरब बैरल जमा कर लिया। जापान लगभग जड़ा है 263 मिलियन बैरल सरकारी रणनीतिक भंडार रखता है ते लाजमी व्यापारक भंडारां नूं मिला के इसका कुल एमरजेंसी भंडार 250 दिनां तों वी वध दा दस्या जांदा है। दक्षणी कोरिया भी लगभग 100 मिलियन बैरल रणनीतिक जड़ा भंडार रखता है जिसका कुल जड़ा एमरजेंसी तेल भंडार लगभग 200 दिनां दे लई काफी जड़ा दस्या जांदा है ते गुआंढी देशां कोई रणनीतिक पैट्रोलियम भंडार नहीं ने। हालांकि पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ते म्यांमार समेत भारत दे जड़े ने किसी भी गुआंढी देश दे कोल कोई रस्मी रणनीतिक पैट्रोलियम भंडार प्रोग्राम नहीं है। इस दी बजाय यह देश एमरजेंसी लोड़ां नूं पूरा करन दे लई मुख रूप दे विच जड़ा है छोटे व्यापारक बालन भंडारां दे उत्ते निर्भर जड़ा करदा है। लो दोस्तों, ए सी जी कुछ गल्लां बातां देश विदेश दीआं खबरां।

माया नाल खजाने पर गे दूगज धरती लिखी नसीबा मिट्टी दे विच रल गए दूगज धरती लिखी नसीबा मिट्टी दे विच रल गए आखर वेले खाली तुर गया

0: बचपन चला गया ते जवानी चली गई, जिंदगी दिखी पति निशानी चली गई। आ आ आगे शमी भाई जी जवानी च
1: ठीक है जी।
0: ओके ना।

अड़या लोक मारी देता ने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडियां खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिन

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर

ताई पहनने आनी बकरी पारोवे, पहनने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सोरे घर जाती है कर ली फर्जां दी कमाई। जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

विस्फोटे इकट्ठे कर ले, अपनी झूठी शान दिखाकर बेसमेंट सब भर ले। रजनीये नू पता नहीं लगना, रजनीये

आखदे ने लोक ही काठो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा बन के कटामा असी धरती बसना है बन के कटामा असी धरती बसना है धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने मां

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अच हंजू केर रोवे, अच हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छड़ दो, धर्मा पिछे लड़ना छड़ दो, तेरा मेरा करना छड़ दो, धर्मा पिछे लड़ना छड़ दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तरो लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी। तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने। अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, धरत मोहताज किस